0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्तियों और मोज़ेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Agla karyakram Hindi mein prasarit hoga. 1992 se chala aa raha 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों, दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है. अधिक जानकारी के लिए www.3zzindian.org. आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से.
2: नमस्कार दोस्तों, आज का प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है अमित तिवारी और रेणु तिवारी के सौजन्य से.
6: तो रेणु जी, आज हम सोच रहे थे कि बात करें, क्योंकि हमारे जान पहचान में और बहुत सारे लोग इधर उधर बहुत घूम रहे हैं, मतलब नई नई जगह देखने जाते हैं, नया नया शौक, मतलब एक तरह से हम सबके पास अब थोड़ा सा टाइम है कि हम अपनी जो इच्छाएं हैं कि क्या क्या दुनिया में देखना है वो सब हम कर रहे हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना हम बात करें कि जब हम इन यात्राओं पे जाते हैं तो हम एक्चुअली क्या देखते हैं. और मैंने सोचा कि चलो इसको हम सभी एंगल से देखते हैं, फिजिकल एंगल से देखते हैं कि हम जाके कुछ नई जगह देखते हैं, कुछ जिनके बारे में हमने पहले सुना होता है उनको देखते हैं. एक हमारा इमोशनल एंगल होता है कि हमें नई जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बात करते हैं और उनके बारे में कुछ समझते हैं.
2: जी हाँ, तो चलिए फिर अब देखते हैं कि दुनिया जो हमें दिखाती है वो कितनी अलग अलग है.
7: और फिर धीरे धीरे हम समझते हैं कि इन सारी तरह से भिन्न होते हुए भी हम सब लोग कितने एक जैसे हैं, जिसे कहते हैं ना अनेकता में एकता। वो
6: जी बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कहीं जाते हैं तो एक तरह से आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं। आप वो आपके लिए रोज एक नया बिस्तर मिलेगा, आप रोज एक नए होटल में होंगे, नए लोग होंगे, और यदि आपके साथ कुछ लोग आपके जान पहचान के हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको हर यात्रा में कुछ नए लोगों से मिलना, उनको समझना और उनसे दोस्ती करना भी होगा।

0: समझाती है कि दुनिया कितनी अलग है, और फिर धीरे धीरे ये भी समझाती है कि इन सारी भिन्नताओं के भीतर इंसान कितना एक जैसा है। कहीं लोग सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, कहीं रात देर तक जागता है, कहीं भोजन बिल्कुल चुपचाप खाया जाता है, और कहीं खाना अपने आप में एक सामाजिक उत्सव होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि जब आप मतलब सिटी में निकले तो बड़े शांति से लोग बिल्कुल फोन को देखते हुए भागे जा रहे हैं, और कहीं आप देखेंगे कि वहां पे म्यूजिक चल रहा है, लोग बाहर बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे कि हम कहते हैं कि हम जब सब बाहरी अपने इन सब कंफर्ट जोन को छोड़कर जब आते हैं तो हमको, मुझे कई बार लगा थे मूल बातें सब जगह एक जैसी मिलती है। हर माँ को अपने बच्चे की चिंता वैसे ही रहती है, चाहे वो कोई भी रेस हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो। और हर परिवार अपने बुजुर्गों की कहानी कुछ सुनता है, हर समाज सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और अपनाया जाए। और शायद यही यात्रा की सबसे बड़ी सीख है कि संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, कि इंसान की जरूरतें बहुत अलग नहीं होती हैं। तो अमित जी, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे?
0: तो रेणु जी, मैंने देखा कि एक पर्यटक जब होता है तो उसकी कैसा जीवन होता है। तो चलो, जिंदगी को एक पर्यटक की तरह जीते हैं। कम सामान, कम इच्छाएं, कम शिकायतें, और हर नए पड़ाव को अपना घर मान लेते हैं। पर्यटक होटल के कमरे से मोह नहीं बांधता, न बिस्तर अपना, न खिड़की अपनी, न शहर अपना, फिर भी हर सुबह वह मुस्कुरा कर कहता है, यही तो मेरा घर है आज के लिए। वह जानता है कल फिर निकल जाना है, इसलिए दीवारों से नहीं, यादों से रिश्ता जोड़ता है। जीवन भी ऐसी ही एक लंबी यात्रा है। हम सब समय के होटल में कुछ दिन के मेहमान हैं। जब आए थे खाली हाथ थे, जब जाएंगे खाली हाथ फिर जाएंगे होंगे। बीच की यात्रा में बस अनुभव, मुस्कुराने, मित्र और कहानियां ही चलती हैं। तो चलो, हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करें। जो भोजन मिले उसमें स्वाद ढूंढे, जो कमरा मिले उसमें अपना आशियाना माने, जो लोग मिले उनसे अपना परिवार देखें, आसक्ति नहीं कृतज्ञता रखें, अधिकार नहीं आभार रखें। यही है पर्यटक का धर्म, हल्के कदम से चलना, खुले मन से देखना, हर दृश्य को ईश्वर का उपहार माना, और विदा होते समय पीछे केवल अपनी मुस्कान छोड़ जाना। क्योंकि सुख वहां नहीं बसता जहां हम रहते हैं, सुख वहां जन्म लेता है जहां हम हर जगह अपने मन को घर बना लेते हैं।
1: क्या बात है हजी, बहुत बढ़िया बोला। तो चलिए, इसके साथ ही हम कुछ ऐसी भी बातों की बात कर लें जो मेलबर्न में इस वक्त हो रही हैं।

0: तो अमित जी, अब हम लोग ये भी थोड़ा देखें कि अब हमारे मेलबर्न में आजकल क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो एकल रंगमंच की तरफ से एक इवनिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड पर्पस ऑर्गेनाइज हुई है 9 अगस्त को। तो ये थिएट्रिकल प्ले होंगे, क्लासिकल डांसेस होंगे, म्यूजिक होगा, और इन सब से जो पैसा इकट्ठा होता है वो हमारे जो इंडिया के जो ग्राम है, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर वो पैसा जाता है। तो ये संडे 9 अगस्त को 4 से 6:30 बजे तक चैंडलर कम्युनिटी सेंटर में होगा। इसमें डिनर भी इंक्लूडेड है इसके साथ में, और हर टिकट के साथ जो है आप एक बच्चे की पढ़ाई और एक गांव को सुधारने के ऊपर उसके ऊपर आप आपका पैसा जाएगा। तो ये जो है इसकी टिकट की प्राइसेस जो है वो $40 है, और जैसे मैंने पहले बताया कि चैंडलर थिएटर में होने वाला है। और एक इसी के साथ एक दूसरी जो आपको एंटरटेनमेंट जो यहाँ पर हो रहा है उसके बारे में बताएं। ये जो है एक मसाज करके, अ जर्नी ऑफ इमोशंस एंड हीलिंग्स बाय राकेश बेदी। जी हाँ, राकेश बेदी आजकल बड़ी सुर्खियों में आ रहे हैं। तो उनका है वीजा ग्रांटेड। तो ये जो है इन्होंने, राकेश बेदी जी, यहाँ पर एक मोनोलॉग है, वीजा अ जर्नी ऑफ इमोशंस एंड हीलिंग, जो है मेलबर्न में होने वाला है 23 अगस्त को। जी 23 अगस्त को कॉलिंगवुड टाउन हॉल में होगा। तो इसके जो टिकट्स हैं वो आप राकेश बेदी DRYT टिकट्स के ऊपर बुक कर सकते हैं। और उसके साथ ही एक और बहुत अच्छी सी बढ़िया खबर आने वाली है, और वो है कि IFFM फिर से शुरू हो रहा है। जी हाँ, इस साल जो होगा 17वां एडिशन होगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का, जिससे हम लोगों की, आप सब जानते हैं, बॉलीवुड तो पूरी दुनिया में फेमस है। मोरक्को से लेकर स्पेन से लेकर सब जगह बॉलीवुड के गाने बजते हैं। तो ये जो है 13 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा, और अवार्ड नाइट जो है 13 अगस्त से शुरू होगी। तो उसमें कोई भी एक लेजेंड को अवार्ड दिया जाएगा, और बड़ी अच्छी नाइट होती है। इसमें बहुत ही आइकॉनिक और लेजेंडरी एक्सेस, जैसे रेखा जो है वो नैब IFFM अवार्ड्स नाइट 2026 पर आएंगी। इस साल IFFM की थीम है शेयर्ड ह्यूमैनिटी शेयर्ड स्टोरीज। तो जो भी कहानियां जो हम सबको जोड़ती हैं, जिसमें किसी दुनिया की कोई बॉर्डर इसमें नहीं है, लैंग्वेज भी नहीं है, हम सब जैसे हम अभी जो ट्रेवल की बात कर रहे हैं कि हम सब लोग एक ही हैं, इन अंदर से हम सब एक ही, उसी थीम को सेलिब्रेट करने के लिए IFFM ने इस बार सोचा है। तो हम लोग आशीष करते हैं कि आप उनके कोई प्रोग्राम को देखेंगे। उसमें कम से कम 79 फीचर फिल्म्स हैं, और 56 शॉर्ट फिल्म्स हैं, और 35 लैंग्वेजेस में होंगी। तो हम सबसे आपसे अनुरोध है, आप वहां जाइए और IFFM का हिस्सा बनिए। अमित जी, जो हम लोग यात्रा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उसके बाद कुछ और भी बताएं हम लोग को, कुछ और आगे इसके बारे में बोलें।
1: तो जब हम यात्रा करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि तीन कैटेगरीज में आप लोगों को बांट सकते हैं। एक तो जो टूरिस्ट होता है, मतलब जो कि देखने गया हुआ है वहां पे, एक पर्यटक होता है, और एक आपका टूरिस्ट गाइड या मार्गदर्शक होता है। तो चलिए हम इन तीन नजरिए से देखते हैं कि इनका क्या मतलब है मेरे लिए। तीन पथिक चलते हैं एक ही राह पर, आसमान वही, धरती वही, नदियां वही, पहाड़ वही, ना बदलता है दृश्य, ना बदलती है सुबह, बस बदलती है देखने वालों की आंखें। पर्यटक या टूरिस्ट, वह आता है आश्चर्य लेकर, पल पल को समेटता है, हर सूरज ढलना एक तस्वीर, हर गली एक याद, हर मुस्कान एक निशानी, जो घर लौटकर कहानी बन जाती है। ये जो यात्री है वह धीरे धीरे चलता है, मंजिल बहाना है बस, यात्रा ही उसकी गुरु बन जाती है। वह सीखता है, सुविधा सनिक है, हर बिस्तर एक रात के लिए काफी है, एक भोजन एक वरदान, हर अजनबी एक सीख, और हर विदा अगले नमस्ते की तैयारी। और जो गाइड या मार्गदर्शक होता है, वह इस राह पर हजार बार चल चुका, फिर भी हर नए चेहरे में उगे हुए पहले सूरज को देखता है। वह केवल इमारतें नहीं दिखाता है, पत्थरों में छिपी कहानियां जगाता है, उनकी ताकत दिशा देना नहीं, दूसरों को वो दिखा देना है जो वे खुद भी नहीं देख पाते। जिंदगी हमसे भी यही सवाल पूछती है कि क्या हम पर्यटक बनकर जिएंगे, चीजें दौड़ेंगे गिनते हुए मंजिलें, या क्या हम यात्री बनकर जिएंगे, अनिष्टाओं के में ज्ञान खोजते हुए, कम में खुश रहकर सीखते हुए, हल्के कदमों से चलते हुए, या हम मार्गदर्शक बनेंगे, दूसरों के रास्ते रोशन करने करेंगे और अपने पीछे पदचिन्ह नहीं हौसला छोड़ेंगे। दुनिया वही रहती है, पहाड़ खड़े रहते हैं, नदियां बहती रहती हैं, इतिहास दीवारों से फुसफुसाता रहता है, पर बदलता है वह दिल जो उन्हें देखता है। खुशियां इस बात में नहीं कि हमने कितनी जगह देखी, बल्कि इस बात में है कि हमने हर जगह को नई आंखों से देखा। यात्रा इतनी करो कि अहंकार झुक जाए, सीख इतनी कहो कि बुद्धि गहरी हो जाए, प्रेम इतना करो कि आप किसी के मार्गदर्शक बन जाए, और जब आपकी यात्रा का अंतिम सूरज डूबे तो लोग याद रखें आप किस देश में घूमे नहीं, बल्कि आपके साथ चलकर कितने लोग आगे बढ़े।

0: थ्री, मैं जैसे कि अब लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं, उन लोगों से बातें करते हैं, हम लोग भी कभी इधर उधर घूमते हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसके बारे में, मैंने कुछ सोच किया, तो मैंने कि संस्कृति जो होती है ना, सबके अलग अलग रूप और समान भाव, जैसे हम पहले भी इस बात को हम बोल चुके हैं, हम सोचते किसी भी समाज को समझना है तो केवल उसकी बड़ी इमारतें या प्रसिद्ध स्थल देखना काफी नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक्चुअल संस्कृति तो छोटी छोटी बातों में दिखाई देती है। लोग खाना कैसे खाते हैं, मेहमानों को कैसे बिठाते हैं, बच्चों से बड़े कैसे बात करते हैं, शादी कैसे होती है, शोक कैसे मनाते हैं, त्योहारों में कहाँ क्या पहनते हैं, किस अवसर पर सिर ढकते हैं, जूते उतारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, गले मिलते हैं, मतलब कि यही ये सभी रिचुअल्स और रीति रिवाज जो होते हैं ये अचानक नहीं बनते हैं, उनके पीछे लंबा इतिहास होता है। कभी धर्म का प्रभाव होता है, कभी युद्ध का प्रभाव होता है, कभी मौसम का प्रभाव होता है, कभी व्यापार का, कभी प्रवास का, कभी उपनिवेशवाद का, और कभी उस समाज की सदियों पुरानी स्मृति का। इसलिए हम जब किसी रीति को देखते हैं तो कहते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसके पहले से हमें पूछना चाहिए ऐसा करने की शुरुआत कब और क्यों हुई, क्योंकि संस्कृति अक्सर इतिहास की जीवित स्मृति होती है। तो आप जैसे आप कहें कि जो जैसे कि बड़ों के जहां पर बड़े आपके हैं, आप उनसे हमेशा झुककर प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या आप उन्हें अपने बराबर का मान रहे हैं, ये सब चीजें उनके हाव भाव में दिख जाती हैं, और उस सबसे हम उस संस्कृति की क्या उन लोगों की आस्थाएं हैं, क्या उन लोगों की सोच है, वो बहुत कुछ समझ में आती है।
1: तो देखो जी, जब आप कोई भी किसी भी जगह नई जगह जाएंगे तो ये सब चीजें बहुत आराम से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप भाग नहीं रहे हैं, आप लोगों को देख सकते हैं, और लोग भी आपको मतलब ऐसा नहीं उनको नहीं लगे, क्योंकि उनको

0: पता आप एक टूरिस्ट हैं, बट आप जब उनको देखें कैसे वो आपस में बात कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कितनी हंसी है, क्या हो रहा है उस जगह पे, गाने कितने चल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, या कौन वैसे कैसे लोग बैठे, तो संस्कृति की ये जो पहचान है ये हर जगह की अपनी एक एक तरह से आप सिग्नेचर कह सकते हो उस जगह का, और वो आज की नहीं, वो कई मतलब जनरेशंस की या कोई मतलब 1000-2000 साल पुरानी भी है। और आप जब उनकी कहानियां सुने या आप उनसे जब बात करें या कोई जब कोई गाइड आपको लेके चलता है तो बताता है कि ये जो मतलब बिल्डिंग है या ये जो इमारत है ये किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी और उनके कितने सारे रीजन थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि संस्कृति को समझने के लिए हमें पहले लोगों को समझना पड़ेगा, और लोगों को समझने के लिए हमें उस जगह को समझना पड़ेगा कि हम वहां से उनकी संस्कृति की वो मतलब फाउंडेशन क्या है।
1: जी हाँ, वो तो है ही। मैं कई बार जैसे कि नेचर के अच्छे सीन से आप जैसे देखते जाते हैं, इतनी खूबसूरत ये दुनिया है, प्रकृति है, तो कई बार देख और उसको किस तरह से रखा गया है, बिकॉज वो दुनिया तो हम सभी को हर देश को वैसे ही दुनिया मिली हुई, वैसे ही सुंदर भगवान ने दी थी, उसको किस तरह से रखा गया है उसमें भी लोगों की बहुत सोच समझ समझी जाती है। तो चलिए इस बात पर भी एक गाना सुन लेते हैं।
0: एक गाती भी है और कहानी कहने वालों की स्थिति भी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इतिहास पढ़ते समय एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए, यह कहानी किसकी नजर से सुनाई जा रही है, और उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा सवाल है, किसकी कहानी अभी नहीं सुनाई गई है।
1: जी ना, कहानियां सुनने सुनाने के अलावा एक और होती है भाषा। देखिए अब हर कंट्री में जाते हैं वहां की भाषा, हमें उसकी भाषा नहीं आती, छोटी छोटी बातें समझाने में कितनी परेशानी होती है कि हम थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं, कभी थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, कभी अपने हाव भाव से समझाते हैं कि इधर उधर के हाथ के इशारों से, सभी मुस्कान से, फिर गूगल ट्रांसलेटर को खोलते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर कभी कोई तीसरा व्यक्ति हमारे ऊपर तरस खा के हमारे ऊपर मदद कर देता है, तो कभी कभी पूरा सवाल केवल चेहरे के भाव से ही हो जाता है।
0: तो भाषा की बात कर रही है तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इंडिया से इतने लोग बाहर निकले हुए हैं कि कई जगह तो आपको लगता है कि आप इंडिया में हैं या किसी दूसरी बड़ी कंट्री से में है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यदि आप हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, सडनली कोई दूसरा आपको जवाब देगा हिंदी में दूर से, या आप कुछ खरीद रहे हैं वो बोलेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, आप दूसरा कुछ ले लीजिए।
1: ये बात तो है, और जैसे कि हमने कहा कि हम कई बार मुस्कुरा के कुछ कहते हैं और कुछ गड़बड़ कह देते हैं, अगला आदमी समझ जाता है, हंस देता है, और उसमें हम लोगों का एक कनेक्शन सा बन जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, एक कविता छोटी सी है, शब्द मेरे थे भाषा उसकी थी, वाक्य आधा मेरा था आधा इशारों का था, फिर किसी ने मुस्कुरा कर सही अर्थ समझ लिया, तब जाना कि दिल की भाषा किसी डिक्शनरी में नहीं मिलती।

0: देखो जी, कई बार हम जब कुछ मतलब आपस में जुड़ी हुई जगहों से गुजरते हैं तो हमें गाइड उस जगह का इतिहास बताता है। बट मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाई कि जब आप वो इतिहास देखते हैं तो एक तरह से वो इतिहास एक नजर हो जाती किसी की, पूरा कितना है वो हमेशा नहीं सुना जाता है। और बात करते यात्रा करते हुए एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाती है कि इतिहास हमेशा एक ही तरह से नहीं सुनाया जाता है, एक ही घटना को अलग अलग देशों में अलग शब्दों में बताया जा सकता है, जिसमें एक पक्ष विजय कहता है तो दूसरा पक्ष उसे आक्रमण कह सकता है, जिसमें कोई खोज कहता है और किसी और के लिए वही घटना अतिक्रमण हो सकती है। तुम आगे कपूर।
1: नहीं, वो बात तो सही है, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग जब जैसे कभी कभी जाते हैं कुछ देखते हैं, बोले हम सबसे पहले पूछते हैं यहाँ देखने लायक क्या है, यहाँ एक फोटो ले लेते हैं, बोले ये तो बड़ी, ये तो मैंने जगह देख ली, हो गया। पर इसका मतलब जो है, यहाँ पर हम सिर्फ तस्वीरें लेने, यादें बनाने में का बहुत कुछ इससे भी डीपर इसका एक वो है। हम कहीं खाना खाने जाते हैं तो उसके पीछे का इतिहास भी, वो खाना क्यों इतना खाया जाता है, वो खाना क्यों इतना पॉपुलर है, इस तरह से ये लोग क्यों बनाते हैं, स्पाइसेस क्यों डालते हैं, क्या वहाँ गर्मी थी इसलिए वहाँ खराब हो जाए इसलिए डालते हैं, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है रहता है। आदमी बाजार में सिर्फ खरीदता है, देखता है कि आज के दिन ये सब जो यहाँ मिल रहा है ये किस, इसकी क्या इतिहास है, ये क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर होता है। तो ये है कि हम सब यहाँ पर मुसाफिर हैं, सब यहाँ घूम रहे हैं।
0: और जैसे कि आप देखिए तो इतिहास में एक सबसे बड़ी बात है कि इतिहास की किताब सभ्यता का विस्तार कहें कि कोई दूसरा समाज उसी घटना को अपनी भाषा, जमीन और पहचान के नुकसान के रूप में याद कर सकता है, तो फिर एक ख्याल मन में आता है कि क्या इतिहास झूठा है? नहीं, लेकिन इतिहास केवल तारीखों का संग्रह भी नहीं है, इतिहास स्मृति है, दृष्टिकोण है और भी है, और कहानी कहने वालों की स्थिति भी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इतिहास पढ़ते समय एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए, यह कहानी किसकी नजर से सुनाई जा रही है, और उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा सवाल है किसकी कहानी अभी नहीं सुनाई गई है।
1: जी ना, कहानियां सुनने सुनाने के अलावा एक और होती है भाषा। देखिए, अब हर कंट्री में जाते हैं वहां की भाषा, हमें उसकी भाषा नहीं आती, छोटी छोटी बातें समझाने में कितनी परेशानी होती है कि हम थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं, कभी थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, कभी अपने हाव भाव से समझाते हैं कि इधर उधर के हाथ के इशारों से, सभी मुस्कान से, फिर गूगल ट्रांसलेटर को खोलते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर कभी कोई तीसरा व्यक्ति हमारे ऊपर तरस खा के हमारे ऊपर मदद कर देता है, तो कभी कभी पूरा संवाद केवल चेहरे के भाव से ही हो जाता है। तो
0: भाषा की बात कर रही है तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इंडिया से इतने लोग बाहर निकले हुए हैं कि कई जगह तो आपको लगता है कि आप इंडिया में हैं या किसी दूसरी बड़ी कंट्री से में है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यदि आप हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, सडनली कोई दूसरा आपको जवाब देगा हिंदी में दूर से, या आप कुछ खरीद रहे हैं वो बोलेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, आप दूसरा कुछ ले लीजिए।
1: ये बात तो है, और जैसे कि हमने कहा कि हम कई बार मुस्कुरा के कुछ कहते हैं और कुछ गड़बड़ कह देते हैं, अगला आदमी समझ जाता है, हंस देता है, और उसमें हम लोगों का एक कनेक्शन सा बन जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, एक कविता छोटी सी है, शब्द मेरे थे भाषा उसकी थी, वाक्य आधा मेरा था आधा इशारों का था, फिर किसी ने मुस्कुरा कर सही अर्थ समझ लिया, तब जाना कि दिल की भाषा किसी डिक्शनरी में नहीं मिलती।
0: एक आपको कविता सुनाई थी कि तीन तरह के लोग होते हैं, तो पर्यटक, यात्री और सफर करने वाला। हम अक्सर टूरिस्ट और ट्रेवलर को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में एक सुंदर अंतर हो सकता है। एक पर्यटक पूछता है यहाँ देखने लायक क्या है, यात्री पूछता है यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। एक पर्यटक फोटो लेता है, एक यात्री कभी अपने कैमरे को नीचे रख देता है, और एक पर्यटक कहता है मैंने ये जगह देख ली, जैसे कि मतलब एक फिजिकल टच करते हैं, जबकि यात्री सोचता है इस जगह ने मुझे क्या दिखाया है। पर इसका ये अर्थ नहीं कि टूरिस्ट होना गलत है, हम सब कभी ना कभी टूरिस्ट होते हैं, हमारे पास सीमित समय होता है, हम प्रमुख जगह देखना चाहते हैं, तस्वीर लेना चाहते हैं और यादें बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी सी जिज्ञासा और विनम्रता जोड़ देते हैं तो टूरिस्ट धीरे धीरे एक ट्रेवलर बनने लग जाता है, और मेनू पढ़ते समय सिर्फ खाने के नाम नहीं देखता, उसके पीछे का इतिहास भी जानना चाहता है। वो बाजार में से खरीदता नहीं है, दुकानदार से पूछता है ये चीज बनती कैसे है, ये किसी लोकल व्यक्ति की बात सुनता है। और अचानक उसका सफर केवल एक साइट सीइंग नहीं रहता है, वह एक संवाद बन जाता है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। और मैं ये भी देखती हूँ, हम हर जगह की संस्कृति और रिचुअल्स जो पहली नजर में बहुत अलग अलग कई बार दिख सकते हैं। किसी भी जगह का भोजन के पहले बड़ी प्रार्थना होती है, कहीं चाय परोसना सम्मान की निशानी होती है, कहीं मेहमान को लिए बार बार खाना परोसना प्यार होता है, कहीं इसे आग्रह माना जाएगा, कहीं जूते पहनकर जाना घर में सामान्य होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा असम्मानजनक होता है, कहीं दुकानदार से बार्गेन करना उनकी संस्कृति ये तो होना ही है, इसमें क्या बुरी बात है, कहीं ऐसा करना अशिष्ट माना जाता है, कहीं पर बुजुर्गों की बात बीच में काटना का अनुचित समझा जाता है, कहीं बच्चों को कम उम्र से खुलकर अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब इसमें सही या गलत का फैसला हम सोचते हैं हमें बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समाज ने अपनी परिस्थितियों में अपने तरीके बनाए हैं। कठोर मौसम ने कुछ संस्कृतियों को अलग अलग तरह से इकट्ठा किया है, व्यापार ने कुछ शहरों को कॉस्मोपॉलिटन बना दिया, युद्धों ने सीमाएं बदल दी, माइग्रेशन ने भोजन संगीत भाषा पहनावे को मिलाया। आप देख सकते हैं अगल बगल की सारी, हम जैसे जानते हैं इंडिया के आसपास जितनी कंट्रीज हैं कैसे बदलता तो है, ऐसे कि हर 100 कोस में हमारा भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, पहनाव बदलता है, पर फिर भी उसमें फिर भी समानता है, क्योंकि धीरे धीरे बदलता है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम जब आज संस्कृति देखते हैं तो वास्तव में इतिहास को आज के रूप में देख रहे होते हैं।

0: देने जी, जब आप पर्यटन करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ टूर तो आप लेते ही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टूर गाइड्स की। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने मिलेगी, हर यात्रा में गाइड की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। और कई बार मुझे लगता है कि एक मूवी आई थी गाइड मूवी, तो उसका मतलब एक तरह से आपको गाइड वैसा चाहिए है। बट देखिए तो उनकी सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। कुछ गाइड ऐसे होते हैं जैसे कि लगता है कि शहर उनका अपना बच्चा है। वे हर इमारत पे गर्व करते हैं, इतने अच्छे से, इतने एक्साइटेड हो कि आपको बताएंगे कि जैसे कि आपको उनकी मतलब उनकी आंखों से आप जब उस इमारत को देखेंगे तो आपको लगता है कि वो भी आप उसके बारे में कुछ जानते हैं और एक पहचानी सी इमारत लगने लगती है। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट होता है, हर कहानी को वो अभिनव के साथ बताते हैं और उनका उत्साह धीरे धीरे यात्रियों में फैल जाता है। कुछ जगह पे गाइड बहुत गंभीर से होते हैं, उनके पास सही तारीखें, सही नाम और बहुत सारी जानकारी होती है। ये आपको भावुक नहीं करेंगे लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। और कुछ गाइड तो ऐसे होते हैं जिनका शरीर आपके साथ है बट उनको वहां होना नहीं है, लेकिन आत्मा कहीं और है। वे जानकारी देते हैं, घड़ी देखते हैं और अगली जगह ले जाते हैं और काम पूरा करते हैं। और कुछ गाइड ऐसे होते हैं जो पूरे माहौल को बदल देते हैं। वे लोगों को जोड़ते हैं, हंसाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं और आप जगह से ज्यादा उन दिनों के अनुभव को याद रखते हैं। तो यही दिलचस्प बात है, एक गाइड केवल इतिहास नहीं बताता है, वो आपके लिए इतिहास का टोन भी तय करता है। उसकी कहानी को एक गाइड, उसी कहानी को एक गाइड गर्व से सुनाएगा, दूसरा दुख से और तीसरा ह्यूमर के साथ और चौथा केवल फैक्ट्स के रूप में। तब हमें फिर वही बातें याद आती हैं, इतिहास केवल घटना नहीं, इतिहास सुनाने वालों की आवाज भी है।
1: तो एक बार आपने देखा जब आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे तो आप भी एक अपने आप का एक कल्चर बन जाते हैं। सुबह सुबह सबसे पहला ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा, हम कितने बजे आ जाएं, वाईफाई का पासवर्ड, जो भी होटल में जाए वाईफाई का पासवर्ड क्या है, और फिर अपने गाइड से भी आज सुबह कितने बजे तैयार होके आ जाएं और दोपहर तक वॉशरूम कहाँ है, कब रुकेंगे हम लोग, कब आएंगे वहां पर, और सबके फोनों में हजारों फोटोज पता नहीं कितनी बार देखी जाएंगी। कुछ लोग तो बहुत सीरियसली करते हैं, कुछ लोग जो है अपने लेके शायद भूल जाते हैं। और पर कोई पूछे कल तुमने क्या देखा था तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, ना तो होटल रूम का नंबर एक किसी को याद है, हम कहाँ से कौन सी सिटी से निकले थे वहां से याद है, किसी को कोई एक बिल्डिंग याद है, पता नहीं बड़ी सुंदर सी एक लाल रंग की बिल्डिंग थी, अब क्या नाम था वो, कौन सी सिटी थी, किसी को तो कॉफी याद है, अरे भैया वहाँ की कॉफी ऐसी थी, बस उसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, मैं वो सिटी भूल कैसे सकती हूँ उस कॉफी के साथ से। किसी को कोई गाइड पसंद आ जाता है कि क्या मजेदार गाइड था, उसने तो मजा ही कर दिया, इस तरह के गाइड्स के साथ तो हमेशा जाना चाहिए। और किसी को सिर्फ ये लंच याद रहता कि क्या गजब का लंच था, ये तो हजारों मील दूर बैठ कर भी हम अपने घर से इतना बढ़िया खाना खा कर आए। और यही तो यात्रा का मजा है, हम सब एक ही जगह जाते हैं पर हर इंसान अलग अलग यात्रा को लेकर लौटता है। तो एक बात और है, हम दूसरों को अपने पैमाने से क्यों नापते हैं, यात्रा में एक खतरा होता है, हम अक्सर नई संस्कृति को अपने पुराने पैमाने से नापते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, यहाँ लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये तो बड़े स्लो हैं, ये तो बड़े लाउड हैं, ये तो बड़े फॉर्मल हैं, ये तो बड़े इनफॉर्मल हैं, और फिर हर जगह क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है तो क्या वही सच है, क्या वही ठीक है कि वो लोग ठीक हैं। अपना तो हम इतने दिन से आपसे कह ही रहे हैं, इतनी देर से आप बता रहे हैं कि आदमी जो आज के दिन वो बनी है संस्कृति को रीजन से बनी है, उनकी कोई हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं उनके पीछे जो हुआ है, आज के दिन वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, लाउड है कि स्लो है, कि जो है वो उस रीजन से ऐसे बने हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप बहुत ज्यादा घूम लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि यह अलग है, बस यही कोई आगे, यह अलग है, यह हमारे जैसा नहीं है, बस ना बेहतर है ना बदतर है, बस ये हमसे डिफरेंट है। और हमारी इसी एक शब्द से हमारी सोच बदलती है, ये जजमेंट कम होता है, क्यूरोसिटी बढ़ती है, यह ऐसा क्यों है, और वहीं से अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, ये नहीं कि हम ही सही हैं, ये लोग तो बड़े बेकार हैं, ये तो अच्छा है, तो हमारे घर सबसे बढ़िया है, उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, उससे हम यही सोच के हमने, मुझे ऐसा लगता है कि उससे हम सीखते नहीं है, उससे बल्कि हम ये पूछें कि अलग क्यों है, वो हमारी सीख अलग ज्यादा है। अमित जी एक बात ये भी है कि यात्रा हमें अपने बारे में भी बताती है, दिलचस्प बात तो यह है कि दुनिया देखने निकलो तो आपको अपने आप के अंदर भी झांकना को आदत पड़ जाती है। आप किसी समाज को देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी बहुत सारी आदतें हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। तो हम जिसको नॉर्मल समझते हैं वो शायद सिर्फ हमारे समाज में नॉर्मल है। अब हमारे यहाँ जैसे चाय बनती है तो अभी देसी हिंदुस्तानी चाय जो बनती है आपकी मिल्क डाल के, वो हमारे लिए नॉर्मल है, पर कई देशों में नहीं इस्तेमाल होता है। और उन लोग को पूछो कि चाय में दूध, तो चाय में हम ऐसे देखते हैं चाय में दूध की आपको क्या जरूरत है। तो हम क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, ये सब जो है हमारे जीवन के बीच में क्यों संतुलन क्या होता है, हमें यात्रा से हमें अपने आप के अंदर झांकने की भी थोड़ी सी आदत पड़ जाती है। और देखते देखते हम दूसरों को देखते खुद को भी देखने लगते हैं, और शायद यही हमारी यात्रा की शायद सबसे बड़ा लाभ होता है। हाँ जी, तो यात्रा के बारे में हम आखिरी बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इतनी सारी संस्कृतियों को देखो, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतने सारे इतिहास, रिचुअल्स, अलग अलग कपड़े, खाने, संगीत, जीना जीने के तरीके, और फिर भी हम अगर बहुत भीतर जाएं तो शायद इंसान की मूल कहानी बहुत अलग नहीं होती। हर कोई चाहता है कि परिवार सुरक्षित रहे, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, मेहनत का सम्मान मिले, घर में शांति हो, समाज में पहचान हो, जीवन में थोड़ा प्रेम हो, और शायद सभी सभ्यताएं इसी मानवीय इच्छा के अलग अलग रूप होते हैं। दुनिया ने मुझसे कहा मेरे कपड़े मत देखो, मेरी कहानी सुनो, मेरी भाषा मत जानो, मेरी भावना समझो, मेरे रिचुअल्स पर मत हंसो, पूछो वे बने कैसे, मेरे इतिहास को सिर्फ एक किताब से मत पढ़ो, कभी विजेता से सुनो, कभी हारने वाले से सुनो, कभी राजा से सुनो तो कभी आम इंसान से सुनो, कभी टूरिस्ट बनो तो कभी तस्वीर लेकर आगे बढ़ जाओ, कभी ट्रेवलर बनो थोड़ा रुक जाओ, कभी गाइड की कहानी सुनो तो कभी उसके पीछे छिपी दूसरी कहानी भी खोजो, और जब भाषा साथ न दे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि भगवान ने और दुनिया ने इतनी भाषाएं बनाई हैं पर इंसानियत के कुछ शब्द हर जगह एक ही हैं, जैसे कि प्यार, सम्मान, दुख, आशा और अपनापन। दुनिया अलग अलग है पर इंसान की कहानी बहुत हद तक एक ही है। नमस्कार।